0: 欢迎收看8月7号大爱午安新闻，我是林奕婷。首先要先来关心的是天气状况，这个周末如果想要出门走走的话，就要多留意天气变化了，尤其是北部地区的观众朋友，因为中台白海豚呢是持续往西前进，气象署表示呢，预计在今天的下午2点半台湾就会发布海上警报，而也因为外围环流的靠近哦，所以今天在西半部还有东北部地区就已经会出现一些间歇降雨，那么明天开始呢，中部以北的雨区还有雨势都还会再进一步的扩大，那么预计台风最接近台湾的时候就是落在星期天。而在台湾正式出现风雨之前呢，比我们更早感受到威力的是日本冲绳，当地吹起了阵阵强风，甚至让人差点站不稳。
1: みんな買いだめとかスーパーとかお菓子は通常棚から消えるってことはないんですよ。
2: 皆さんなんか不安というかもう備えなきゃっていうような感じ。
1: 電気が止まると下手したら3日ぐらいもうダメな時があるんでしょう。ちょっと備蓄用に炊いておこうかなと思ってもう先ほど炊きました。
0: 日本冲绳沿岸掀起了大浪，还有风势也相当强劲，也预期会有强降雨。由于台风目前移动速度缓慢，因此影响时间可能再拉长。不过当地正值类似台湾清明节的盂兰盆节，因此有很多行程还有交通都被打乱了，像是机场全天关闭，航空公司陆续取消航班，都为返乡还有旅游的旅客带来了变数。日本另外一个地方熊本，因为七月底的强震，直到现在呢，交通都还没有完全恢复。要来看到是九州新干线，从福冈到鹿儿岛，贯穿了当地南北，每天平均载运有1.7万人次。但是强震之后，有多个路段毁损，对于商务通勤、医疗转送、观光还有物流都造成了直接冲击。我们来透过地图看到，其中是在博多还有熊本这一段，其实在震后3天就抢通了。而今天的好消息是新水鱼到鹿儿岛的路段呢也是恢复通车，不过是以减少班次来运行，那么现在就剩下熊本到新水鱼段停驶了，因为受损严重依旧是停驶的状况，恐怕是就连8月都没有办法恢复。
3: 7時前です。水俣から仙台間で今日から始発オレンジ鉄道の運行が再開されます。
4: 日本熊本地震后，因为铁轨受损，经过连月抢修，一条连接鹿儿岛县川内站到熊本县新水鱼站的地方铁路5号终于通车。
5: すごく良かったです。もうタクシーだと結構高いので、やっぱりオレンジ鉄道がないと大変だなと身に染みました。
4: 不过，大家最期待的是连接九州南北大动脉的九州新干线，不知何时全面恢复。根据日本媒体的报道，从九州新干线最南端的鹿儿岛中央站到熊本县新水鱼站，8月7号灾后首度通车，但班次减少。至于最关键的路段，连接水鱼市、八代市与熊本县最大城市熊本市这一段，恐怕不乐观。
6: 熊本駅から新水俣駅の間では、レールに大きな歪みなどが見つかっていて。復旧には大幅な時間がかかるということです。
7: 孫たちが市内の方に学校通ってるんですけども、どうなるかなと心配しております。車はもう渋滞してますから、なかなか。
4: JR 九州公司表示，没有恢复的路段10号左右开始会提供替代巴士服务，希望至少能给需要的民众多个选项。大新闻综合编译。
0: 其他国际消息要来关心，印尼的知名观光景点婆罗摩火山国家公园这星期爆发了森林大火，火势延烧超过4天，烧毁大约了60公顷土地。由于火场是位在山势陡峭的火山地形，再加上强风吹拂，这都增加了救灾难度。根据画面可以看到，消防员背着水管持续朝火场喷洒大量水柱，但是火势仍然在山坡还有灌木间不断蔓延。印尼国家灾害应变署表示，目前火势有受到控制，但是部分偏远山区仍有零星火点持续燃烧。大火过后，焦黑的草原和植皮覆盖一层白霜，形成了罕见景象，而部分烧焦的植物甚至是仍然持续冒烟。婆罗摩火山是印尼最热门的旅游 景点之一，而它也是一个活 火山。为了避免游客靠近火场发生危险，当局紧急关闭了国家公园。至于恢复时间，还有待后续评估。再看到中国大陆西北部以及华中地区正遭受暴雨袭击，陕西省商洛市以及湖北宜昌等地呢爆发了严重的洪水，强降雨造成道路中断，上百栋的房屋受损或是倒塌，还有多个景点和企业紧急停业，当局也紧急撤离了数千名的受灾民众。滚滚泥流夹带洪水冲进街道，空拍画面上我们可以看到，这是河川暴涨，洪水漫过道路，整片地区呢几乎是成了一片汪洋。陕西省商洛市安康市五号的时候降下了豪雨，多处道路桥梁受损，民宅呢也遭洪水破坏，大型机具进驻灾区清除土石，施工人员连夜抢修道路。官方表示，商洛市已经启动了防汛三级应变，景区关闭，客运停驶，部分工地停工。而这一波豪雨影响了九个乡镇、54个村庄，有造成300多户房屋受损或倒塌，也撤离了超过5000人。湖北宜昌同样淹水，救难人员搭乘橡皮艇救出受困居民。当局表示，已经预防性疏散了1000人。随着积水退去呢，居民也才可以开始清理家园。其他消息再来看到，慈济在距离菩提迦耶会所大约20分钟车程的莫卡里姆村，从去年开始透过了竹筒岁月、米铺满还有慈善关怀，和村民建立了情谊以及信任感，更了解到村民对于教育的渴望，所以在今年7月，志工是2度完成了学童普查家访，举办了一个快乐学习天地的亲子说明会，到8月的时候，承载着全村希望的教室也正式开课，全由本土志工规划成立，而第一堂是英文课。
4: 志工再度来到普利加耶近郊的莫卡林姆村，带来的是孩子的希望。
8: So previously we come here for the charity things for the bamboo and the rice bank. We ask anything you want from the Suchi members to help. They ask, brother, we ask you the one thing is the education and the medical.
4: 慈济听到村民的需求，举办亲子说明会后，承载着全村期待的客服教室正式开课。第一堂课先学习英文字母。拉杰石是一位老师，加入慈济之前就会主动教导住家附近的孩子他们的功课。
9: आज सूची एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हमें मिला है, जहाँ से हम सूची के माध्यम से अपने आसपास के लोगों को, अपने गांव के लोगों को, टोला कोला के लोगों को.एजुकेशन देने का काम करते हैं, क्योंकि हर बच्चा जो है उसके अंदर एक पोटेंशियल भरा है, वो कुछ भी बन सकता है, ये बच्चे भी आगे चल के बढ़िया कर सकते हैं।
4: 教育帮助脱贫，马来西亚志工团队把握机会尽一份力。
10: When you teach, it's not about just teaching, but it's about giving love. So the more education knowledge we can pass on to them.That would be like very great help to them.
4: 慈济提供全新文具给16位正式学员，也致赠纪念品给无偿提供教室的所巴。
11: Next Sunday, remember, bring all this time, no leave at home.
12: 每一个礼拜，他们轮流来教这群孩子，所以。真的看到普利迦耶的本土志工的希望已经发挥了。
4: 大爱新闻达纳王成轩印度报道。
0: 尼泊尔兰皮尼学前教育者协会举办了培训课程，有一天安排了30位专家到兰皮尼佛教慈济学校参访，希望可以一起将人文教育广泛推广。
4: 满脸笑容的从巴士上下车，30位从事学前教育的专家们特地在他们培训课程的其中一天，安排大家到兰皮尼佛教慈济学校参访取经。
13: यो भिजिट गर्ने यो क्रममा होइन आज चाहिँ हामी सडन्ली नै यसरी यो अपर्च्युनिटी पायौँ. सर्वप्रथम त म स्कुल टिमलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु. कति सानो सानो कुराहरू बताइदिनु भयो, एकदमै हजुरहरूको वेलकमिङ हस्पिटालिटी साह्रै राम्रो लाग्यो होइन. हजुरहरू हामीलाई यति राम्रोसँग गर्नुभएछ भने हाम्रो अहिले जो चाहिँ हाम्रो यो देशको कर्णधार हाम्रो बालबालिकाहरूलाई आज कति राम्रोसँग गर्नुहुन्छ.
14: 担任蓝皮尼省学前教育者协会主席的莎拉斯瓦蒂表示，目前在蓝皮尼省有12个县市200所幼儿园是协会的成员，他们听闻佛教慈济学校的办学很符合幼儿早期教育与发展标准，参访后很希望透过协会向外推广出去。
15: नयाँ कुराहरूमा हामीले बालबालिकालाई दिइरहेका हुन्छौँ होइन, र बच्चालाई सिकाइरहेका मात्रै हुन्छौँ. लर्निङ बाई डुइङ यहाँ देख्यौँ हामीले, सँगै पढाइसँगै आफूले पनि गर्नुपर्ने के छ त, हाम्रो कर्तव्य के हो, म उमेर अनुसार मैले के गर्न सक्छु त भनेर बच्चाहरूलाई जुन हजुरहरूले सिकाइरहनु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो छ.
16: एकदमै राम्रो चाहिँ प्यारेन्ट्स इङ्गेज भएको चाहिँ असाध्यै मन परेको छ. हामीले बार बार उहाँहरूलाई भन्ने गर्छौँ के प्यारेन्ट्स इङ्गेज भयो भने त्यो प्यारेन्ट्सले ट्रस्ट जब विद्यालयलाई गरेपछि विद्यालय त्यसै राम्रो हुन्छ, बालबालिका पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ
17: जति पनि देखाउनु भयो हामीलाई भिजुअल देखाउँदाखेरि पनि बच्चाहरूले डिसिप्लिनले वर्क गरिरहेको, उनीहरू बसेको उठेको होइन, उनीहरूको त्यो एक्टिभिटीहरू त्यो चाहिँ सेयरिङ गर्न पाएँ नि त मैले यस्तो यस्तो छ भनेर. र वान डे चाहिँ मेरो पोसिबल भयो भने मेरो स्कुलको प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ चुजीको स्कुल चाहिँ भिजिट गर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ बच्चाहरूले प्यारेन्ट्स नै इन्भल्भ भएर कसरी काम गरिराख्नु भएको छ.
14: 这群校长每一个人都有一颗妈妈心，在参访的同时也用心将所见所闻记录下来，期待这种实践生活教育的教学方式能在尼泊尔的更多学校扎根落实。大爱新闻白露露、拉梅什、阿马凯什，尼泊尔报道。
18: 这件事情藏在我们家儿子，我们家六个小孩藏在心里最痛的那个疤，今年全部被掏开。
19: 你们不要以为妈妈看不到，你们在做什么事情，妈妈都清清楚楚。妈妈的眼睛在这里。
20: 不管我在不在，你都要是我的骄傲。
18: 嗯。如果你不给我的话，你等着家破人亡啊！
19: 你真的只是一个会计吗？
20: 这辈子我最疼的就是我们那六个孩子。
19: 你都不回家了，你要怎么疼他们？我不离婚，我们就是一个完整的家，没有人可以拆散我们。
21: 早就散了，我们现在这样还像一个家吗？
19: 我们不可以向命运低头，如果放弃，那就是真的输了，就看不到乌云散去的阳光。